गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे छाए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन। श्री जयदेव जी महाराज बंगाल दे केंद्री नामक पिंड विच जन्मे, जिला भीम बेहरू सी, और आप ठेठ बंगला भाषा देच ही माहिर सन। विद्या आपने संस्कार चूंके ब्राह्मणा दे सन संस्कृत दी हासिल की थी और संस्कृत दे महान पंडित बने। समस्त देश देच आपने भक्ति भाव दियां लहरां छड़ियां। आप ग्रस्ती सन, आप दी पत्नी दाना पद्मावती सी। समस्त तीर्थां ते रटन करदे आया, प्रभु भक्ति दे गीत गांदे आया, लोकाई नूं रब नाल जोड़दे रहे। चूंकि आप बंगाल दे वसनीक सन ते बंगाल दे लोकी गीत संगीत नाल बहुत प्यार रखते ने। विरासत चो मिलिया सी गीत ते संगीत। आप दा एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ दा नाम भी है गीत गोविंद। कहिंदे ने कि रोज उठ के गीत गोविंद दी छंदा बंदी करनी लिखना, ये आप दा रोजमर्रा दा कर्म बन चुकिया सी। इस ग्रंथ नू आप ने लिखे है महाराष्ट्र दे शहर पंडरपुर दे च। कहिंदे ने एक दिन ऐसा होया, जद ग्रंथ संपूर्ण होण ते आया है, ता आप दी लिखण शक्ति कुंद होंदी गई। जदके पंडरपुर दे महाराजा ने आले दुआले दी तमाम संगतां नूं भगत प्रेमियां नूं ए कहला भेजा सी कि पूर्णमाशी वाले दिन बिठल दे मंदर दे च गीत गोविंद नाम दे ग्रंथ दा प्रकाश होवेगा, और इस दे गीत जो भगती रस नाल भरे हुए ने संगतां नूं भगवत प्रेमियां नूं सुनाए जाणगे। पूर्णमाशी विच सिर्फ दो दिन रह गए, गीत गोविंद देवी सिर्फ दो छंद रह गए। लेकिन आज सारा दिन मेहनत करके आप लिखण दी कोशिश करदे रहे, लेकिन जयदेव दे दिमाग विचों कोई गीत दी लाइन ना आई ते कलम लिखण विच असमर्थ होई। भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रसंग नूं अपने पौणी विच इंज कलमबंद करदे ने, प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे, लीला चलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर भावे, पर अखड़ इक नावड़ो बन पुस्तक संदया कर आवे, रोज निता प्रति अमृत वेले उठ के ग्रंथ नू नाल लै जांदे सन। नदी तट ते इशनान करन तो बाद अपने रोजमर्रा दे नितनेम तो फारग होके लिखदे सन, और जद काफी लिख लेंदे सन ते जद थक जांदे सन ता आप इस गीत गोविंद नाम ग्रंथ नू सिर ते चुक के कर लिया हुंदे सन और रोजमर्रा दे कर्म विच मशहूल हुंदे सन। लेकिन अज निराश लौटे, अज पंक्ति नहीं बनी। गीत गोविंद नू संपूर्ण करना है, पर दिन भी सिर्फ एक रह गया, और गीत गोविंद विच सिर्फ एक दो पंक्तियां ही रह गई हैं जो श्री जयदेव दे दिमाग विच उभरदियां ने और कलम लिखण विच असमर्थ है। ऐसी ये कोई गैबी लीला वर्ती निराश होके जद घर लौटे ता आपनी पतिवर्ता सुपत्नी पद्मावती ने पूछया कारण, ता जद सारा कारण दसया
तो पति दे दुख देच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन देच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं होता या उसके दिमाग देचों गीत दिया लहरा नहीं निकल दिया तो जेड़िया उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है कि वह कभी ही जानता है कि वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौ गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उनू निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। किन्ने ने पत्नी दी ए गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोचदे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखे है। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती ता जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कह लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया है तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भज्जे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया हुई ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नु पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस्य दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास कीती हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा
तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदे ने अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं की दी, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धनवाद दे नाल भरे जय देव, अश्कबार हो बार बार सजदे च होए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भगती भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी याद तशरीह कर देने, उस राम दी याद व्याख्या कर देने। इस पदे दे परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरख वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया व्यापक है वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमन मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नू नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनू सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा उनू जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनू अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है, जबान जिथे तक कथन करती है उथों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है, कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर दी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आऊंगा, वो किसी की कल्पना विच नहीं आऊंगा। मन की सोच तो परे, मन के विचार तो परे, इस वास्ते आप कहते मनोपिमंग मनो उपमा तो रहत है।
परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रथ आया। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमं सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जाता है, हैरान हो जाता है, विस्माद हो जाता है। जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके। फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके। उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है, उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य दे च जीवंदा है, एक कवि रहस्य दे च जीवंदा है, एक संत रहस्य दे च जीवंदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनु पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया, विस्माद नु खत्म जरूर किया। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी रहस्य सी वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ये विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने। भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहते ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी का ढेर पिया, सवेर का वक्त है, सूरज दियां किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारिया विच तू है पर फिर भी सारिया तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करण दे नाल
ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਮੰਗ ਸਤਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਰਤਨ ਪਰ ਮਦਭੁਤਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰਨ ਜਗ ਚਿੰਤ ਸਰਬਗਤਨ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰਗ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਨ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰਣੇ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਉਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਈ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਬਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਹਿਬਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਣੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਹੁਲਾਸ, ਉਸਦੀ ਉਮੰਗ, ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦੇ ਦੇ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰੈਨ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਜਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਮਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚਿੰਤਕ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇਗਾ। ਤੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ। ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ।
भव भूत भाव समव्यन प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया होया है व्यापक है भवभूत भाव समव्यन जो हुण भी है पहले भी सी अगावी जो है होवेगा जो हर समय मौजूद है त्रैकालदर्शी है भवभूत भाव समव्यन परमन प्रसन्न मिदन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है तू उस दा ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है ओदे सामने जग तुच्छ है जोग साधना भी तुच्छ है और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है और जग करने वालों तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी

0: जाप कर और इस तरह जाप कर दें तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन विच ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने, गोविंद दे सिमरन विच ही लोक सवर जांदा है, पर लोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

जद कोड़ माया जीवन का लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लोही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नूं प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़ झूठ। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कहने ने सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलनहार। किसनों पकड़िए सब कुछ चलायमान है। न इत्थे दिन टिके होया है, न इत्थे रात टिकी हुई है, न इत्थे बचपन टिके होया है, ना इत्थे जवानी टिकी हुई है, ना इत्थे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया तो फिर कुछ भी टिकया होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहे होवे ते चलायमान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नु पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नु पकड़न की कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नु पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा, जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दिश ना आवे, जैसे पवन नु पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दें हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे चना आवे, चलायमान है, उसनु चंचल आखे है, उनु कूड़ आखे है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस एक कूड़ चाहिए, यही संसार चाहिए। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरवाणी कहंदी है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लेके खुशी मिलती होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जाणोगे मनमुख है? जिसकी सारी खुशी लैण दिच खड़ी है, जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधर लेना पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है, ये लोभी दे लक्षण है। हथों देके भला मनाए, देके खुशी आती है, देके प्रसन्नता आती है। और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगता है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, पर जे लैन दे चाहे तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होवेगी।
तृष्णालु दा लक्ष्य

0: बचपना है, द्वापर जवानी है, कल युग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नु वेखना होवे बच्चे नालों, गर्भकाल दे बच्चे नालों, खिडौणिया नाल खेडदे हुए बच्चे नालों और जवान नालों, बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसके कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने। उतार चढ़ाव का सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नु महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर भणीए, कलयुग उत्तम जोगा माही। ए युग उत्तम युग है, क्यों? स्याणा युग है। और ये गल ते मन्नी पर मन्नी है, इस युग दे जितनी स्याणप उजागर होई है, जैसे जैसे पीछे जाओगे उतने नहीं सी। ये जो चार युग ने, गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, इन्हां दे अपने अपने अवतार ने, उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच, हकीकत दे रूप विच असी देखिए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां, गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भकाल दी अवस्था सी। गर्भकाल दा बच्चा मां दे श्वासां नाल श्वास लैंदा है। मां जो खांदी है उसकी ओही खुराक है, मां जो पींदी है बस उसका ओही पान है। स्वतंत्र रूप दे उसका खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी, प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उन्हों सवारना, यह अजे मनुख ने नहीं सिखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी, लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भकाल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे चाहे है जिस हालत दे एक योगी समाधि दे चाहुंदा है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहुंदा है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है वही आनंद उस कोल है, वही रस उस कोल है, फिर जीवन भर उसे ही आनंद नु ओ लभदा है। ये आनंद स्वभाव किस नु प्रकृति ने ही प्रदान कीता है। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसकी खुराक है, मां दा पीता होया पानी ओही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां दे श्वासा नाल श्वास ले रहे है। इस बच्चे ते कोई समाज राज नहीं। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसकी खुराक है, मां दा पीता होया पानी ओही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां दे श्वासा नाल श्वास ले रहे है। इस बच्चे ते कोई समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जिम्मेवारी नहीं है। सतयुगी जीव कल्ला तनहा जीण वाला पहाड़ां दियां कंदरां विच रहन बसेरा करन वाला, रुखां थले रात कटन वाला, प्राकृतिक रूप विच जीण वाला। कोई रिजक दी चिंता नहीं सी। इतनी वनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल स्वभाविक उपलब्ध सन। ये जी रहे सी इस तरह जैसे गर्भकाल का बच्चा जी रहा है। निश्चिंत सी, बेफिक्र सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग विच कोई परबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल दे बच्चे नो आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसे दी भी लोड़ नहीं है। ओते उस अवस्था विच जी रहे है, जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दिती जाती है, उते स्वभाविक है उसके कोल मन उसका टिकिया होया है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का वाक पहले पहरे रहण के वण जारिया मित्रा हुकम पाया गरबास उर्द तप अंतर करे वण जारिया मित्रा खसम से थी अरदास। भावे उल्टा है गर्व देच पर अरदास देच है, प्रार्थना देच है और नाम अभ्यास देच है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बन दी है, प्रार्थना जो आनंद बनता है वो उसके कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहे है, उसे ही रस दे जो है जी रहे है। इस वास्ते कहिंदे ने सतयुग विच अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माणियो छलियो बल बावन भायो, बावन अवतार बोना अवतार। हां कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नु कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल, खुला घूम रहा सी, कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे स्वतंत्र होके जो है जीवदा है, यह जीवना स्वभाविक उस मनुख कोल सी जिसनु असी सतयुग कहिंदे आ ते सतयुगी जीव कहिंदे आ। जैसे बुढ़ा भी बचपन नु याद करता है, किसे हद तक गर्भकाल की अवस्था नु याद करता है, हो बहो सतयुग मनुख नु बार बार याद आंदा है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो स्वभाविक अवस्था सी ब्रह्म ज्ञानी दी, स्वभाविक प्राकृतिक रूप दे, उसनु हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याग है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नु खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे ने, गर्भकाल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो रहा है, ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी, प्रकृति ने ही उसनु जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी और उस दे मनुख जी रहा सी सत दे संतोख दे। सतयुग रथ संतोख का धर्म गे रखवा, मर्यादा दे जी रहा सी, भुख लगी है ताई खांदा सी उंज नहीं, प्यास लगी है ताई पींदा सी उंज नहीं, नींद आई है ताई सौंदा सी उंज नहीं। बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी, भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी, और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी। फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लभण वास्ते ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੋ ਸਵਸਥ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਭਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਸ 'ਤੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬੋਧ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਗਰਭਕਾਲ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਕੁਟੰਬ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਦਵਾਓ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਨਾ ਝਪਟੀਆਂ ਆਮ ਸਨ, ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਖੋਆ ਖਾਈ। ਅਤੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਦ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏ ਉਸ ਵਿੱਚ श्री राम प्राइमरी स्कूल दे उस्ताद कहे जा सकते ने, और प्राइमरी स्कूल दे बच्चों नूं पढ़ाण दा ढंग, खास करके नर्सरी दे बच्चों नूं पढ़ाण दा एक ढंग, समझाण दा एक ढंग श्री राम ने आरंभ किया। द्वापर जवान हो गया मनुख, हुण इस नूं उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है, हुण इस नूं बोलण दी तमीज सिखाण दी लोड़ नहीं है, जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नूं भी कहना पए तो इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वह जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदा है, बालग हो गया। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण, और कृष्ण जी नूं कहिंदन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दी शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, हुण दे च उबाल बड़ा है। द्वापर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया हुण, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नूं जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल है, उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा, जब जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ये विचारधारा देण आए श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल, मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नूं एक पासे कर दिता जाए, मनुख नूं मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा दी पालना करदे आया श्री राम ने गर्भवती सीता नूं अपने घरों कढ दिता, मर्यादा दी पालना करदे आया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी बहु गिणती विच, अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नूं मनना ही पएगा। तो सीता नूं घरों कढ़ना पया, जदके निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नूं भी मर्यादा सजा दे देवे, इह श्री कृष्ण नूं काबले कबूल नहीं सी। जीवन नूं लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नूं दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसी विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं, किसी खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला दी तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नु फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था। बुढ़े तोते नु पढ़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजली दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता अगां चल के, मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप च अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर। उजैन दे भैरव काल दे मंदिर दे अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा, दिन भर मास दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी क्योंकि सब कुछ धर्म दे नां ते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पाणी आया, देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदरां दे च सी। सब कुछ नूं छड़ के वो मंदिर ही लुटते रहे और मंदरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे च हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं बन के वो अपने मुल्कां नूं गवन करते रहे और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होने लग पे और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे दे च भी राग आए, संगीत आए पर मर्यादा दे, पदार्थ आए लंगर दे रूप दे पर मर्यादा दे, धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे मर्यादा दे रूप दे। पर मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन दे च रस बनिया रवे और रस मर्यादा दे च रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचदी है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखया जन सोत, अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश ए संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाकई ए उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलक दी तंग दिली भी हटा दिती, सरबत दे भला मनन मंगन दी जाच सिखाई और आख्या सरबत दा भला मंगो। सारा संसार थोड़ा मुलक है, थोड़ा मुलक केवल थोड़ा मुलक नहीं, सारा संसार ही थोड़ा मुलक है और थोड़े मुलक दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं, सारा संसार साड़ा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल युग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दे च पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालू होंदा है ते सियाणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलदा भी है। उम्र का तकाजा देख के बुजुर्ग है उसकी हर गल नूं अगले सही मन लैंदे ने बुढ़ापे करके, जबकि सही नहीं आती। तो यह एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ से व्यापक है, तृष्णा से व्यापक है। एक गर्भकाल के बच्चे च की तृष्णा होगी, एक खिडौणिया नाल खेडदे बच्चे के अंदर की तृष्णा होगी। हाँ, जवान के अंदर हो सकती है और बुढ़े के अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ये तृष्णालु युग, ये झूठा युग और ये बहुत स्याणा युग। इसनों गुरु नानक ने आखिया तू सिख है, सीखना है अजय, तू कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि बुढ़े नो सब तो वड्डा माण यह आंदा है मैं सब कुछ जानता, इस जवान नो की पता है, इस बच्चे नो की पता है। वाकई एक बिरध के सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान के सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने गा के शिक्षा दी। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबा मिलाईयां, रब्बी संगीत नू जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू किया। आलम कहिंदे ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किए, गुरु नानक ने धोने नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं, गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है, गाउण दे च विश्वास है। पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने प्रभु दा दर गाउंदे होया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है तो उसदे दर तक पहुंचने दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग, वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नू शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे और आपने मनुख की दुनिया चो जात पात नू एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नू भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हाँ जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो किसी नू शूदर ना आखो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे पाई, जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आखिया सिर्फ जोत नाल जुड़ो जात नाल नहीं, एक पासे रखो जात नूं जोत नाल जुड़ो। शरीर सारियां दे अलग अलग ने, असी देखते हैं एक शरीर का मास दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है, मन भी अलग अलग ने, किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते हैं, दो मनुखा की विचारधारा किधरे एक हो जाती है, सारे संसार की विचारधारा भी एक नहीं हो सकती, हर एक का तन अलग अलग है, हर एक का मन अलग अलग है, पर सारिया की आत्मा तो एक ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हर एक दे अंदर आत्मा वेखो वो एक है, आपका संदेश ते उपदेश भी एक है, सारे एक ने, सारे एक दे विच ने, सारिया का मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते, सारिया का वर्ण धर्म वेख एक ही है और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उसे रूप अपने आप नू जो है रखो और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहती है और परमात्मा दियां बख्शिशां उन्हों मरदे दम तक प्राप्त होंदियां रहिंदियां ने। चार युगां दी विचारधारा गुरबाणी नमुख रख के तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: महाराज ने सिख कौम की नींह रखी है तो फिर मर्यादा जिहड़ी है दसवें पातशाह तक परपक हुंदी गई है तो मर्यादा की नींह रखण वाले गुरु नानक महाराज कहिंदे देखो परकर्मा उहदियां हुंदियां जिहड़ा गुरु होवे गुरु दियां परकर्मा जरूर करी दियां ये गुरमत विच है परकर्मा करनी। कहिंदे फिर अग है जिहड़ी ये मेरा तां इष्ट है नहीं हिंदू धर्म वाले ने इष्ट मनिया ये करन परकर्मा अग नूं मथा टेकण मैं ते अग नूं पैदा करन वाली नूं मथा टेकदा अग खट ज्योतियां दे विच है बुद्धि बिजली चंद सूरज तारे ये खट ज्योतियां मनिया सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिहद चानण सब मैं चानण होए। सतगुरु महाराज ने कहा कि भाई इस रीत दे अंदर इउं लिखिया है भी पहले नंबर ते तां वेद होण जे वेद ना मिले वेद की परिक्रमा करे फिर ता मुकम्मल हुंदे है जिवें असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे द्वारे परिक्रमा करदे हां जे वेद वेदो भावा जे वेद ना मिलन वेदो अभावा तां अग्नि फिर अग बाल लो। कहिंदे जे अग्नि भी ना मिले अग्नि अभावा तां विप्रहा कहिंदे फिर ब्राह्मण नूं बिठा लो क्योंकि बावन गुरु है जगत का ये भी चार युगां तों गुरु बनिया रहा चाहे कुछ आउंदा सी चाहे नहीं। उहदा कबीर साहब ने कहा भी भगतां दा गुरु नहीं हो सकता इन्हां मूर्ख लोगों का गुरु हैगा तू अर्ज उर्ज के पचमो चारों वेदों माए इस करके ना कहिंदे ना मेरा ब्राह्मण गुरु ना अग्नि ते ना ही वेद मेरा गुरु है मैं अपने गुरु की परिक्रमा कर सकदा। महाराज तुहाडा गुरु कौन है अपरम परपार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जीओ ओ पार ब्रह्म नूं कौन लिया भी फेरियां वास्ते। कहिंदे फिर महाराज साडे बस की गल नहीं अपने फेरे तुसीं आप ही कर लो जिहड़े तरीके नाल कर सकदे हो। महाराज कहिंदे आपां गुरु प्रगट कर लैने अपने गुरु नूं बुला लैने कहिंदे जिवें तुसीं उह बुला सकदे हो बुलाओ अपने पार ब्रह्म परमेश्वर। कहिंदे लियाओ कलम लियाओ कागज एक लियाओ तीड़ा दो लियाओ रमाले। महाराज ने मूल मंत्र लिखिया मूल मंत्र लिख के पीड़े ते रख के रमाला पा के फिर सत्कार योग माता सुलखणी माता चोणी जी नाल फेरियां दी रस्म कीती कहण तो भाव के शब्द नूं गुरु मन्या मुढ़ तो ही गुरु मन्या गुरु नानक ने। इस करके महाराज कहिंदे आपे शब्द आपे गुरबाणी दे शब्द रूप तू ही है निरंकार दे आप ही निशान किए प्रगट हैं जी
1: आपे सुरता आपे जान
0: ते आप ही सासु जी पिछली तुकदा भाई आप ही तू नाम रूप दा निशान किए परवाना है ये भी अर्थ महापुरुषा ने किया आपे सुरता आप ही तू वेद दा वक्ता रूप है आप ही जानकारी रखने वाला है अथवा आप ही जिज्ञासु रूप हो करके। रत्ता दा अर्थ है प्रीतिवान होना प्रीति विच रत्ना ते आप ही तो सोक ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रीति क्यों प्रीति दा विषयां दी श्रेष्ठ नहीं ना मन होंदी प्रीति दा परिवार दी भी है श्रेष्ठ नहीं है तो आप ही सो श्रेष्ठता विच ससा वर्त हुंदा है। रत्ता आप ही श्रेष्ठ प्रीति करने वाला जिज्ञासु है ते आप ही शुभ जानकारी ब्रह्म ज्ञान दी जानन वाला आप ही ज्ञानवान है आप ही जिज्ञासु रूप है अथवा आप ही घट घट के अंतर की जानत जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे अंतर जामी सब को जाने गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रमाण तू आप ही सब को जानदा है महाराज
1: आपे कर कर वेखै तान।
0: हुण इत्थों साहिब सिंह आपां थोड़ी जी संकोच लईए क्योंकि समय दे अनुसार ही सोभ नहीं हुंदा है जो समय दा विधान है उहनूं कदे साहिब सिंह जी तोड़ना नहीं चाहीदा। अगला प्रोग्राम जिहड़ा सिद्धियां धारना द्वारा महापुरशां ने जो वड्डियां दे कोलों सीधे ढंग दे कीर्तन सिरके सीधे साधे लोगों दे पसंद आने वाली गल जिहड़ी हर एक दे समझ आ जाए गुरबाणी दे सिद्धांत नूं प्रगट करना है। बजुर्ग महापुरशां ने आप ही तू आपे कर कर वेखें तान हे मेरे परमेश्वर जीओ तू आप ही अपने तान कहिए वल द्वारा गावै को तान तान दा अर्थ वल हुंदा है तू आप ही अपने तान किए वल द्वारा संसार नूं कर कहिए रचदा है करदा है की करदा रचना करदा है ते उस रचना नूं करके फिर तू उहनां दे कर करतवां नूं भी तू ही देखदा है। खसमे नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाणे तू सारियां घटां दी जाणदा है इक कीड़े दी भी इह गल दा तैनूं पता भी किन्ने दाणे खाणे आ उसने इस करके तू सारयां दे करतब नूं जाणदा ए जीव दा अग्ञान है भी मैनूं कड़ा कोई वेखदा ए निश्चय है ना भी कोई मैनूं मनुखी अख नहीं वेखदी पर ए नहीं पता भी जिहने तैनूं सजा देनी है उह ते वेख रिहा है

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: और दस पातशाह का हुक्म है कि अग आवत सिंह जो पावे वाहेगुरु जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाउण नाल दो बार वाहेगुरु गुरमंत्र का सिमरन हुंदा है। और साध संगत जिहड़ी रसना नाल आपां वाहेगुरु कहिंदे आ, वाहेगुरु कहण नाल रसना पवित्र हुंदी है। ये बेनती मैं थोड़े दिन पहला दरबार साहब तो भी कही, पानी नाल हाथ धोवोंगे हाथ सुचे हो जाते ने, पानी नाल पैर धोवोंगे पैर सुचे हो जाते ने। किसी ने प्रशाद वरतौना होवे उन्हूं कही दे भाई हाथ धो के कोई सेवादार आओ प्रशाद वरतौना। अच्छा, वो हाथ धो के आउंदे ने, कड़ा प्रशाद वरतौण लग्या हाथ नाल प्रशाद लैके एक नूं दित्ता, दो नूं, तिन्नां नूं, चौं नूं, दसां नूं, वीहां नूं, पंजावां नूं। वार वार कड़ा प्रशाद हाथ नाल चुक के वरतौंदे ने, कदे किसी ने कहा नहीं वी तेरे हाथ झूठे हो गए, क्योंकि उन्हें हाथ धो के प्रशाद वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बहण है, कोई पैर धो के आउंदा उन्हूं महाराज जी की ताबिया बिठाई दे, भाई तू पैर धोते ने पैर सुचे हो गए। पर साध संगत आ जीभ जिहदे नाल आपां बोल रहे हाँ, ये जीभा किस तरह का इंद्रा है जिहड़ा किसी भी कीमत ते सुचा नहीं हुंदा। जे कोई बंदा कहे ना कि मैं तो ब्रश किया होया जी, मैं बाहरों पानी का कुरला करके आया, मेरी जीभा हुण सुची हो गई है, पर जीव जिहड़ी चीज़ नाल तुसीं लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता, क्योंकि जीव सुची नहीं है। हाथ धो के किसी चीज़ नूं लाउंदे हो हाथ सुचे ने, वह वस्तु जूठी नहीं होएगी, पर जीव तुसीं बाहर पानी का कुरला करके आ जाओ ब्रश करके आओ, फिर बंदा कहे जी मेरी जीव सुची है, जिहड़ी चीज़ नूं जीव लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता। इहदा मतलब जीभा जिहड़ी है वह सुची नहीं हो सकती। पर पातशाह की बाणी ने कहा भाई जीभ भी सुची हो जाती है, रसना भी सुची हो जाती है। महाराज कहदे नाल कहिंदे नाम जपत गोबिंद का सुची पई रसना। भाई ये सुची पई रसना कहदे नाल, नाम जपत गोबिंद का। जे कोई रसना नाल जपे सतनाम श्री वाहिगुरु ओदी रसना सुची हो जाती। इसलिए दो बार वाहिगुरु गुरमंत्र आउंदा वाहिगुरु दे विच जदों आपां फतेह गजाउंदे, भाई ये रसना भी पवित्र हो जाती है। बाहरों हाथ पैर धो के अपन गुरु दरबार में आए हाँ, हुण रसना पवित्र करने लिए कहना पैंदा, एक बार फिर रसना पवित्र करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहिंदिया मुख पवित्र हो जाए, वाहिगुरु कहिंदिया श्वासां दा भला। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जिया का आपां पुरब मना रहे हैं शहीदी दिहाड़ा। मैं तुहानू गुरु तेग बहादुर महाराज जिया का एक सलोक लैके कथा आरंभ करनी है, ध्यान नाल सुने। दुनिया में जिन्ने भी मनुख ने हर बंदे नू अपनी समझ उत्ते अकल उत्ते बड़ा माण है। जिन्हों मर्जी पुछ लो कहिंदा मैनू सारा कोई पता है, मैनू बहुत अकल है। जिहड़े बच्चों मां प्यो उंगली पकड़ के तुरना सिखाते ने, मां गोदी विच बिठा के बोलना सिखाती है, उही बच्चा जदों 15-18 साल का हो जाता है वह मां प्यो नूं कहण लग जाता तुहानूं नहीं पता मैनू पता है सब। जदों अकल का दौर शुरू हुंदा है हर बंदा कहिंदा मैनू अकल है, हर बंदा कहिंदा मैनू सब कुछ पता है। पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचन कहा भाई किन्ना भी कोई बुद्धि जीव होवे, कोई ज्ञानी होवे, कोई ध्यानी होवे, कोई किन्ना पढ़िया लिखिया होवे, बंदा जो अपनी अकल नाल चाहुंदा ये याद रखियो वो कुछ हुंदा नहीं, बंदा कुछ होर सोचदा रब कुछ होर कर दिंदा। इहदा मतलब बंदे की सोच परफेक्ट नहीं है कि जो मैं सोचा उही होना, जो मैं विचारिया उही होएगा, नहीं। बंदे की मर्जी हर काम विच नहीं चलेगी, कुछ कुछ जिंदगी विच गल्लां ने जिहड़ियां पूरियां हो जाणगियां, अदरवाइज ये सच है ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਓ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਓ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਹਿ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼ ਆਰੈ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼ ਆਰੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦਾ, ਚਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੋਰ, ਔਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करने वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति।
1: जय मार पिता सुतमीत न भाई,
0: मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई।
1: जय महा ध्यान दूत जम दल,
0: केवल नाम संग तेरा चले।
1: जय मुश्किल हो वह अत भारी,
0: हर को नाम खन माहे उधारी।
1: अनक पुनः चरण करत नहीं तर,
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
1: गुरमुख नाम जप मन मेरे,
0: नानक पावो सुख कनेरे।
1: सकल सृष्टि को राजा दुखिया,
0: हर का नाम जपत हो सुखिया।
1: लाभ करोड़ी बंधन पर,
0: हर का नाम जपत निस्तर।
1: अनक माया रंग तिख न बुझावे,
0: हर का नाम जपते अकावे।
1: ये मार्ग ये जात अकेला,
0: तै हर नाम संग होत सहेला।
1: ऐसा नाम मन सदा थियाइए,
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए।
1: छूटत नहीं कोट लख बाही,
0: नाम जपत तै पार पराही।
1: अनक बिघन जह आए संघार,
0: हर का नाम तत्काल उधार।
1: अनक जोन जन्म मर जाम,
0: नाम जपत पावे विश्राम।
1: हो मेला मल कब हुन धोवे,
0: हर का नाम कोट पाप खोवे।
1: ऐसा नाम जप मन रंग,
0: नानक पाइए साध के संग।
1: ये मार्ग के गन जाहि न पोसा,
0: हर का नाम हां संग तोसा।
1: ये पैंडे मह अंत गुबारा,
0: हर का नाम संग उजियारा।
1: जहां बंद तेरा को ना सिंजानू,
0: हर का नाम तह नाल पछानू।
1: जय महा भयान तप्त बहु काम,
0: हर के नाम की तुम ऊपर शाम।
1: जहां त्रिखा मन तुझ आ करख,
0: नानक हर हर अमृत बरख।
1: भक्त जना की बर्तन नाम,
0: संत जना के मन विश्राम।
1: हर का नाम दास की ओट,
0: हर के नाम उदरे जन कोट।
1: हर जस करत संत दिन रात,
0: हर हर औखद साध कमात।
1: हर जन कह हर नाम निदान,
0: और ब्रह्म जन कीनो दान।
1: मन तन रंग रते रंग एक,
0: नानक जन कह व्रत पवेक।
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत,
0: हर कह नाम जन को तृप्त भुगत।
1: हर का नाम जन का रूप रंग,
0: हर नाम जपत कब परे न भंग।
1: हर का नाम जन की वडियाई,
0: हर कह नाम जन शोभा पाई।
1: हर का नाम जन को भोग जोग,
0: हर नाम जपत कछ नाहि बियोग।
1: जन राता हर नाम की सेवा,
0: नानक पूजे हर हर देवा।
1: हर हर जन कह मालिक जीना,
0: हर तन जन को आप्रभ दीना।
1: हर हर जन कह ओट स्थानी,
0: हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: ओत ओत जन हर रस राते,
0: सुन समाद नाम रस माते।
1: आठ पहर जन हर हर जपे,
0: हर का भगत प्रकट नहीं छपे।
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे,
0: नानक जन संग के ते तरे।
1: पार जाते हो हर को नाम,
0: काम तेन हर हर गुण गाम।
1: सबसे उत्तम हर की कथा,
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा।
1: नाम की महिमा संत रिद बसे,
0: संत प्रताप दुर्त सब नसे।
1: संत का संग वट भागी पाई है,
0: संत की सेवा नाम ते आई है।
1: नाम तोल कश अवर न होए,
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक।
1: बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल।
0: पूजस नाही हर हरे, नानक नामे अमोल। अष्टपदी
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान,
0: शास्त्र सिमृत ज्ञान।
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया,
0: सकल त्याग बन मध्ये फिरिया।
1: अनक प्रकार किए बहु जतना,
0: पुण्य दान हूँ मैं बहु रतना।
1: शरीर कटाए हो मैं कर राती,
0: व्रत नेम करे बहु भाती।
1: नहीं तुल राम नाम विचार,
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार।
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे,
0: महा उदास तपी सरथी वै।
1: अगन माहे होमत प्राण,
0: कनक हसब है भरपूर दान।
1: न्योली कर्म करे बहु आसन,
0: जैन मार्ग संजमय साधन।
1: निमक निमक कर शरीर कटावे,
0: तो भी हम मैल न जावे।
1: हर के नाम सम सरकश नाही,
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।
1: मन कामना तीर्थ दे छुटे,
0: गर्भ घुमान न मन ते हुटे।
1: सोच करे दिन सर रात,
0: मन की मैल न तन दे जावे।
1: इस देही को बहु साध न करे,
0: मन ते कबहु न बिखिया टरे।
1: जल धोवे बहु देह अनीत,
0: सत कहा होए काची भीत।
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
0: नानक नाम उदरे पतत बहमूच।
1: बहुत सियाण जमका भव व्यापे,
0: नानक जतन कर कृष्ण ना त्रापे।
1: एक अनेक अगन नहीं बुझे,
0: ओटो पावदर गैने सिजै।
1: छूट सुनाही उब पयाल,
0: मोहे व्यापे माया जाल।
1: अवर करतूत सगली जम डाने,
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने।
1: हर का नाम जब दुख जाए,
0: नानक बोले सहज सुभाए।
1: चार पदार्थ जे को मांगे,
0: साध जना की सेवा लागे।
1: जे को अपना दुख मिटावे,
0: हर हर नाम रिदा सदगावे।
1: जे को अपनी शोभा लोरे,
0: साध संगे हम मैं शोरे।
1: जे को जन्म मरण ते डरे,
0: साध जना की शरणी परे।
1: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा,
0: नानक ताके बल बल जासा।
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान,
0: साध संग जाका मिटे अभिमान।
1: आप सुको जो जाने नीचा,
0: सहु गनिया सब ते ऊंचा।
1: जाका मन होए सकल की रीना,
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना।
1: मारे अपने ते बुरा मिटाना,
0: इक है सकल सृष्ट साजना।
1: सुख दुख जन साम दृष्टिता,
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा।
1: निर्धन को धन तेरो नाऊ,
0: निथावे को नाऊ तेरा था।
1: नमाने को प्रभ तेरो मान,
0: सकल घटाको देवो दान।
1: कर्म करावन हार स्वामी,
0: सकल घटाके अंतर जामी।
1: अपनी गतमित जानो आपे,
0: आपन संग आप प्रभ राते।
1: तुमरी उस्तत तुम ते
0: नानक अवर न जान सकोए,
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म।
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया।
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया,
1: सगल उद्यम में उद्यम भला।
0: हर का नाम जपो जी सदा,
1: सगल बानी में अमृत बानी।
0: हर को जसन रसन बखानी,
1: सगल थान ते हो उत्तम थान।
0: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक।
1: निर्गुण यार सो प्रभ सदा संभाल,
0: जिनकी आतिस जीत रख नानक निभही ना। ਕਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਪਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ
0: ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸਟਾਨੀ
1: ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ
0: ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ
0: ਪਰ ਜੋ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
1: ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ
0: ਮੁਖ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ
1: ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਪੂਜੈ
0: ਬਖਸ਼ ਲਿਖੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ
0: ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ
0: ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕੇ ਅਮੁੱਲਾ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਤ ਪਰਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਮ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ
0: ਇਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ
1: ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ
0: ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦਿ

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: जिसते वृथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचै कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोड़ सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को भर पै
0: जा सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहतावे
1: जे को होए बहै दासार
0: जिस देन हार जाने गावार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तर
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जा
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: भोखो जलहर दर कै सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतबर हार
1: चरण साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइया कुर्बान
1: साध सेवा वटभागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का उ करना जोग
0: जिस बिन दूसर हुआ न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रैणी
0: शक्ति उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सच आकार।

0: सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सद विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तू दया के लकरो, सच्चे सबतान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाह, सच्ची तेरी गुरु सच्चे पाशाह, नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकाच निकाच।
1: मोहला पहला वड्डी वडाई जा वड्डा नाम, वड्डी वडाई जा सच नाम, वड्डी वडाई जा ने चल थाओ, वड्डी वडाई जाने आलाओ, वड्डी वडाई पूजा सब भाओ, वड्डी वडाई जा पुछना दात, वड्डी वडाई जा आपे आप, नानक कारना कथनी जाए, कीता करना सरबरदा।
0: दूजा है जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास, एक ना हुकुम

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: चौथ मोहल्ला पहला पर गड्डी लदिए पड़ भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्ण बरत्या कल कार्त बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जेक हो तो कुबे रुति हुर्त होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवित खुमचड़ा ये सरुम पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान में होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदा गवे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: नील वस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख्या पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाई मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते बड़ते।

आपे भांडे साजन आपे पूरन दे इक नी दुद्ध समाई एक चुल्ले बयान चढ़े इक ने हाली तैस वाली गुरपुर खड़े तिना सुवारे ना।

जो जपै सो होए पुनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच यान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वह भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी सोभा तनवंत हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नान।

जब आकार एहो कछ न दिसेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारे आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न

नहीं, तब बंध मुक्त कहो किसका होगा नहीं। जब एक हर आगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपै प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतारै, तो सगन अपसगन कहां विचारै। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद समाया।

साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्राप्त कहो नेरा, मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दो लेहो सवार, राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए।

अस्तपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा।

संतरमाह चार कुंट दैद से समाह इसते पिन नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक वाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावै ता करे विस्थार तिस पावै ता एकंकार अनक कला लखी नहि जाए।

खेम कुशल सहज आनंद साध संग पाए परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम।

सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोक है निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। सन जो

हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बौर न होवै आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसह प्राप्त होए, खेम सांत रिद्ध नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध्य सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् काबेता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते यम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम

अवनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हर नाम। श्लोक

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्नम है जिन उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख पिया बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीझै जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भुगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा यो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धभ प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छप सुनाहे कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पत्र कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निस्कहिया तो समझै पूरा कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहां उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई तां स्यों प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ

नानक कहू न सिझे मिन नावै पत जाए अष्टपदे दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण विखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले औ मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर सियों नाही चारा ताकौ कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी देरास खात पीत बरतै अनंत उलास अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बाहर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगे रखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लपट रहे तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केहे मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या

मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत।

गोविंद भजन बिन बिथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर।

मरै जिसके अंतर बसे निरंकार इसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जान है अपना किया आप मान है आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जान है आत्म की।

अष्टपदी जय प्रसाद छत्ते अमृत खाहि तिस ठाकुर कौ रख मन माहि। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परम गत पाव है। जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग तत अबर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब तरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जाव है। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करेहे। जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत मनाई उठत बैठत।

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तुहा चार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुरप्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद, जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभ को मूल न मन हम विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड़ तू ताका जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच, जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो ना हो, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सब निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किन हूं लया, जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साथ जिना

कि आचार्य कथा अष्टपदे साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रैन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कभू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता,
ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सर जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है प्रमाण। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सुझ ही परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी।

तीर्थवासी कई कोट बन तम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौहिर है, कई कोट पर दुख न करह।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरक निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण।

कई कोट तप्त के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं को नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोए।

नानक सच कह कबू होए पंडित करे बखियान कबू मौन तारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबू साध संगत इहो पावै उस स्थान ते बहर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े।

सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर किरपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै त्रिण समान कट संग न जावै बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिनमै होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै। आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए, कौ नानक ता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त हो।

जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप आप प्रसोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझै देखै करै विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करनै हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करनै हार, कौतुक करै रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रू

जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदिर कौ थम थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइया पुरब लिखे का लिखिया पाइया दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करै सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मह तोल लाल खेप संतै संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोहे मुख उज्जल हर दरग है सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा वडभागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै ओट गही संतै दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक कौ जी वाल नहार भूखे कौ देवत आधार सब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लैणा पाहे सब किस तिसका ओ करना जोग तिसबिन दूसर हुआ न होग जप जान सदा सदा दिन नैणी सब ते ऊच निर्मल एक करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल सिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तिहु लोए जाकै हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृष्ट सच आयाकार सच वरतै सच अपासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदे अविनाशी प्रभ मन महराख मानुख की तू प्रीत त्याग इस ते परै नाही किछ कोए सर्व

अनुराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सज जाका है सर्व थोक सुनी है करता कह राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूर।

ना चलत करे खिन माहे, पूर रहे पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर मंत बनाए, अपने कीमत आपे पाए। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जन।

नाम की तारे पुरिया सब पवन, नाम का संग उदे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी माणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भले। सत नाम प्रभ का सुखदाए, विश्वास सत नानक गुरते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जान जाकर हृदय प्रवेश, सत निरत बूझा जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार, अब न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राच जान रहे, गुर कै भजन पदार्थ लहे, होए दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड़ पागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत।

आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत्ता भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कहो सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पहचानिया जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहि समाना बस्त माहि ले बस्त गडाई।

ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम करंग। सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे। अपने जन का पर्दा ढाके अपने

के सेवक का को न पूछै, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मह कल राख है, पसम करै लस्कर कोट लाख है, जिसका सास न काटत आप।

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्श सब पाप मिटाव है, अवस्यान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन

अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसार हो, चरण कमल हृदय में उतार हो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत्थ, एहु तन संच हो।

जाकर हृदय बसै हर सोए, काल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिनसै पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसै अविनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा।

सब ताब है मूर्ख मना सोत मीत कुटंब अरबंता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ अस

जब आकार एहो कछ न दिसटेता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारे अपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग।

कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपै प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन, जब अपने आप उतारै, तो सगन अपसगन कहां विचारै, जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जय अचल अछेद।

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभु एक हो नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दो लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माह नानक बहुर ना आवै जाए इस ते दूर कहां को जाए उबरै राखन हार ते आए।

राष्ट्रपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अंगमत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए सो अंत

कै मद अलिप्तो रहै, जो किछ कहना स्वापे कहै, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै ता लए समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किनै कच करा, आप भला करतूत आत्मिक की, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए ता सुझ ही पाए, इसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।

जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम।

निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सबते ऊचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम

रावण हार स्वामी सगल कटां के अंतर जामी अपनी गत मित जानहु आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का नाम जप हो जीय सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण।

अस्तपदे परमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्नम है जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अपया बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीझै जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भुगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा यो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धभ प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पुचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छपसनाहे कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुमान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निस्कहियै तो समझै पूरा कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह।

नानक कहू न सिझे मिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस बस्तूले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकुर सियो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगनत साहु अपनी देरास खात पीत बरतै अनंत उलास। अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे बाहर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखै प्रभ की आज्ञा मन माथै। उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै। जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के हे। मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद। मिथ्या रसना भोजन अंसवाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है। मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पे सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आर्जा साच बिना कह होवत सूचा।

जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जन नहार प्रभु प्रबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार इसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप मानै आपह आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत किस पावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए।

राष्ट्रपति जय प्रसाद छत्ते अमृत खाह तिस ठाकुर कौ रख मन माह। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परमगत पाव है। जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरग है मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जय प्रसाद तुझको न पूछे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे। जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असल हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत

0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तुहा चार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहज जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभु को मूल न मन हम विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड तू ताका जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो ना हो, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड
0: से। फल पावे साध का संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध का संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साध का संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्ज एक ज्यों वसुधा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मनमा है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ग है प्रमाण अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सुझ ही परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हर्ख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिद जिद कर रख है तैसा तिनाओ आपे कर्ण करावन जोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसरे आप होए अंत तरंग।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्फ उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्थशास्त्र, कई कोट किए रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक्ष किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत।

कई कोट तप्त के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को सास सास मारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं को नानक तिस बलिहारण है जल थल मही अल सो

निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण।

वहां क्रोध विकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अप कीर्त में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यो प्रभ राख तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यो स्वंगी दिखावै, ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत इहु पावै, उस स्थान ते बहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकत न आवै, सर्व की रेन जाका मन होए, कौ नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै, सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सै आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करना हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करना हार, कौत करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माह, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रू

संत का दुखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बू आड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइयै, संत का दुखी न मरै न जीवाइयै। संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निरासा। संत का दुख न तृष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया कीर्तना मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसहि ते आवो सास गिरास। सब कछु वरतै तिसका

अवनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जान हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते

राष्ट्रपति जय प्रसाद छत्ते अमृत खाह तिष्ठाकुर कौ रख मन माह। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परमगत पाव है। जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह ते आए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरग है मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझ को न पहुंचै मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असल हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत।

मन आठ पहर करत इसका ध्यान, जे प्रसाद तुआ चार व्यवहारी, इस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै, जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद, जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहज जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभु को मूल न मन हम विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड तू ताक

बंधनते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास तर्क है प्रमाण, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सुझ ही परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिद जिद कर रखे तैसा तिन्नाओ, आपे

कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्फ उपाए कई कोट पाथर बिरक निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमर

कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सर्ब की होतरवाल, कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु पेखारी नीच का साजा, कबहु आप कीर्त में आवे, कबहु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ रख तिव ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मौन तारी लावे ध्यान, कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहु साध संगत एहु पावे, उस स्थान ते बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सै आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करने हार, कौत करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्ये किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कर सुनी सर्व बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरनहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदे संत का दुखन आरजा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै। संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए। संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत का दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए। संत दोखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिक न पाए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी को डाल लग गए, संत के दोखी को सब त्याग गए। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा बिकारी। संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी किता काज ना पहुँचै। संत के दोखी का उद्यान परमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीज आपे ही खाए। संत के दोखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावै ता लय उबार। संत का दोखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बू आड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइयै, संत का दोखी न मरै न जीवाइयै। संत के दोखी की पूजा न आसा, संत का दोखी उठ चलै निरासा। संत का दोख न तृष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया कीर्तना मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, इसहते आवो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका की।

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-6790.
1: Family Care Pharmacy
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

रूपरेखा है, लंबे चौड़े शब्द देखों, कुछ पंक्तियाँ मैं आपकी के सामने रखा जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण की थी। ने सतजुग सत संतोख शरीरा, सत सत वरते गहर गंभीरा, सतजुग सात कहे सब कोई, सच वरते साचा सोई। झूठ बोलना सतजुग दे मनुख नु आउंदा ही नहीं सी। उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट से लोड़ा सीमित सन और लोड़ा दी पूर्ति प्राकृतिक रूप दे हो जाती है। प्रकृति सब दी झोली दे लोड़ा दी पूर्ति पा देंदी सी, कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल शिकार इत्यादि खुले रूप दे उपलब्ध से आबादी थोड़ी सी, सैकड़े मेल तक वसों नहीं सी, झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी, तीन चरण एक दुविधा सुकी। त्रेते देख विश्वास दी थां ते दुविधा आ गई, लिहाजा धर्म दी एक कला नाश हो गई, विश्वास भरोसा सिदक ए नहीं रहा। मन विच दुविधा पैदा हो गई है कि नहीं, दुविधा इसनों कहंदे ने। दो पासे दी धावना पैदा हो गई है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन विच ख्याल आंदा है तो मनुख ईश्वर दे नेड़े होंदा है, उसके मन विच रस होंदा है, टिकाव होंदा है, खेड़ा होंदा है, खुशी होंदी है। और जब दूसरा भाव दुबदा दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नु जन्म देंदियां, दूरियां बेरसी नु जन्म देंदियां ने, दूरियां कल कलेश ते संताप नु जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास दी लत टूट गई। दया दुआपुर अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। दुआपुर देखते दया मानो अधी ही रह गई, कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी, कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा देच भी भरजाई नो नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नो चचेरे भिरावां नो जंगल देच पजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नो बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता दा रूप धारण कर गई। जद पिरा के दया नहीं तो फिर गैरा नाल व्यवहार की होवेगा। ये द्वापर दा नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय दी गति दे मुताबिक साढ़े सामने रख देना। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग देखते केवल धर्म दी इक्को ही कला रह गई, प्रभु दी कीर्ति। पर बिना गुरु दी समझ तो ये किसे ने भी बाखी नहीं भाव, ये कीर्ति किसे ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इक्को ही कला तो रह गया, प्रभु दी कीर्ति गायन करने, नाम जपना, प्रभु दे गुण गाने। बस कल युग दे यही एक कला रह गई।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा

0: मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, डेढ़ घंटे के मिस्टेक से पहुंचा, इतना रश, इतने भीड़, वीआईपी जो है पास मैनू मिले ऐसी कार का, पर भीड़ चले किस तरह, कोई थोड़े जिया नसते खिचाव करके मैं चल नहीं सकता सी, उन्होंने बेचारे ने पास बना दिता, वो गड्डी के मैं चले, इन्नी भीड़, इतने भीड़, थोड़ा जिहा पैदल चलना पाया, वो पुलिस ने रस्ता बनाया, उन्होंने बस की गल भी नहीं सी, कहने के ज्ञानी जी आम पब्लिक होवे ते असी होर व्यवहार करते हैं, पर हुण संगत है, संगत दे नाल असी संगत वाला ही व्यवहार करांगे, ते गुरु की संगत है रस्ता देवेगी ते तां तुहानूं लै जावांगे, उंज नहीं, उंज मुश्किल। मैं डेढ़ घंटे स्टेज तक पहुंचे, करीबन करीबन हर मजहब के मुखी पहुंचे हुए सन, स्टेज दे उत्ते जब दास पहुंचिया सी, जो न्यू अमृतसर बनाया गया सी पंडाल बहुत वड्डा, और उत्थे भी एक अंदाजे दे मुताबक कहिंदे ने 25 लाख दा कट सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दे दरगाह दे जिहड़े इस वक्त मुखी मौजूद ने वह भी पहुंचे सन। हर मजहब का मुखी इक्को ही स्टेज ते बैठा सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दी दरगाह दे मजौर ने जिहड़े दो शब्द कहे, मैं कह के समाप्ति करा, उन्हें कहा खुदा ने आख्या जगत हो जा, जगत हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 400 साल स्थापना दिवस मना रहे सन, ते गुरु ग्रंथ साहब शब्दा अवतार कहिंदे ने, एक शब्द होया खुदा तो हो जा, जगत हो गया, तो जगत शब्द तो होया है। अगले जिहड़े दो शब्द ने सुनने वाले ने जिहड़े उसने कहे, चूंकि मेरे कोल ही बैठे सन, मेरे बोलन तो बाद उन्होंने 10 मिनट ये बोल बोले, कहन लगे अजे दुनिया सियाणी नहीं है, जिस दिन सारी दुनिया सियाणी होई ते सियाणी दुनिया का एको ही पैगंबर होवेगा, और उस पैगंबर का नाम होवेगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये उस दे लफ्ज जो मैं थानू सुना रहा, ये उस दे बोल ने जो मैं थानू सुना रहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया उदी दरगाह दे मुखी मजा। इतनी विचारा प्रवान करनिया, धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

शब्द क्या कहन लगे, तू झूठा है। अपने मन नू कहंदे तू झूठा है, तेनू कोई खाक नहीं सुचा भोजन छके। कल तो बाद जिहड़ा अंदर जात वाला भूत वड़िया इनू झूठा भोजन दिता जाए। प्यारे ओ सारे भांडे चुकने पर कुछ कु पतलां चुके एक पासे रख लैणियां, यह हकीकत है। इनू अत कथनी ना समझियो। गुरु अंगद साहब किवें बरखा करदे, जदों सारिया चले जाना जेड़िया पतलां लुका के रखिया होनिया उहदे विच्चों सब्जी भाजी का किनका मात्र चुन के एक थां ते कठिया करके खा लैणा। माता खीरवी जी देखना सारा दिन सेवा करदा, लंगर कितों छकदा है। अज देखिया कि जदों सारे चले गए दोपहर दे लंगर तो बाद लोग के सारियां पतलां हूंज के आ पिया खाए। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा कि बाबा जी भाई जोध सारा दिन सेवा करदा पर पंगत विच लंगर नहीं छकदा। नहीं मन्ने गुरु अंगद साहब। फिर एक दिन अचनचेत आए, इस नूं जे पढ़ना होवे ते पढ़िओ भाई वीर सिंह होणा दा अष्ट गुरु चमत्कार। आए देखिया कि यह सज्जन पत्तल दे विच्चों चुक के छोटे छोटे किड़के खांदा पे। सतगुरु ने देखिया कहन लगे भाई जोध यह की करदे पए हो। इको दम कंब गए, हाथ झाड़ के उठ खलोते, कह लगे की कर रहे सो। कह लगे दाता अंदर झूठा है ते झूठिया नूं झूठा ही भोजन चाहिदा है। अंदर झूठा है, तुसी पंगत विच क्यों नहीं बैठते। कहिंदे ने अगे अंदर जात वाला भूत बैठा है, जदों नाल कोई बैंदा है ते कहिंदा मैं ब्राह्मण मैं उच्चा। कहन लगे इनू रहण दिओ नीवा, इनू उदो समझ लगेगी जिन्नी देर तक पत्तलां विच नहीं रहिंदा ते लंगर दे भांडिआं विच नहीं रहिंदा। सच्चे पातशाह देख के त्रुट पै माता खीवी जी कोल आए, सिर ते हथ रख के कहन लगे भाई जोध तू सच्यार है, तू झूठा नहीं तू सच्यार है। अज तो बाद लंगर विच बैठ के भोजन छकना है। जदों कहिंदे ने इन्ना शब्द सिर ते हथ रख के कहा, सारे विद्वान ये मानते ने कि गुरु अंगद साहब दे हत्थां विचों इहो जी मानो वरखा निकली कि भाई जोध देवता बन गया, सिर तो पैरा तक नाम दे नाल भिज गया। इत्थे फिर भाई साहब ने कहा जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर सारी। ते अखीरली तो के कहन लगे पूरे सतगुरु पै सवारी। पूरे गुरु ने उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रख दिता, किरपा कर दिती। अज पंगत विच बैठ के लंगर छकन लगे, किसे पुछ लिया कि अज इत्थे क्यों बैठे। कह लगे झूठ वाला भूत निकल गया है, हुण अंदर गुरु बैठा ते गुरु नू अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा भोजन ही देईदा। अंदर गुरु है, हुण ओ गुरु अंगद साहब समुंदर बन गए। जेड़ा उन्हां कोल आया उन्हां बरखा कीती, तां ते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है। गुरु अमरदास जी दी पट कीरत जी कहिंदे कथा बयान तो रहत है, वो अकत कथा है। गुरु अमरदास की अकत कथा है, ते किवें अकत है जी। उन्हां नाल बचन क्या एक जी ही साडी जीव एक है, कछ कही ना जाई। की बयान करांगे, गुरु अंगद साहब दी कथा अकत है, असी नहीं बयान कर सकते। क्योंकि पट पिछे भी कह के आए ने कि दाता जी कन खर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत।